के हर सामान पे की जान पे को यहाँ पे लगा दे सही दाम पे की जान पे को यहाँ पे लगा दे सही दाम देख गज बुरका खत्म मेरी पहचान पहचान मुझे तेरे जंगल का शेर खान जहर काम करूँ ना लू किसी का भी एहसान बाप बने मेरा तेरी माँ यहाँ पे तुझे पता क्या है मेरी